0: Looking to grow your business and reach the York College community? If you are a current York College student entrepreneur, this opportunity is for you. Let YC Radio help you spread the word. YCRadio.org, the official York College internet radio station, is inviting current York College student entrepreneurs to promote their business with a free on-air public service announcement. Whether you're selling products, offering services, or launching your next big idea, we'll help you create a professional PSA that showcases your business to the campus community. Promote your passion. Grow your brand. Start today with YCRadio.org. To get started, email Brian Graves at bgraves@york.cuny.edu or Lisa Ray at lray901@york.cuny.edu. We'll be happy to help you create a professional PSA that gets your message heard. Your next customer could be listening. Get your message on YC Radio. Your business, your brand, your voice, only on ycradio.org. YCRadio.org, the voice of today's generation.
1: This is YCRadio.org, the voice of today's generation.
2: धोखा धड़ी चेतावनी. अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MF. A. कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MF. A. कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी आईटी आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी एमएफ ए अनुरोध का उत्तर न दे. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या एमएफ ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
3: Your college is looking for a DJ. No radio station is complete without DJ, and that could be you. Come talk to us in room 1G06G. Email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. Once again, email us at bgraves@york.cuny.edu. Call us at 718-262-5293 or visit our website, ycradio.org. We'll be looking forward to meeting you. ycradio.org, the voice of today's generation.
4: Alerta de estafa. Nunca comparta su contraseña de acceso de CUNY ni su MFA. Por favor, recuerde lo siguiente. Nunca comparta sus contraseñas ni sus factores de autenticación multifactor, o MFA, con nadie. El personal de tecnología de la información, de su campus o de CUNY nunca se lo solicitará. No responda a una solicitud de MFA si usted no inició el proceso de inicio de sesión. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos en mensajes de texto o correos electrónicos sospechosos o inesperados. Si cree que proporcionó su contraseña o factor de MFA, hizo clic en un enlace sospechoso o abrió un archivo adjunto sospechoso por error, comuníquese con la mesa de ayuda, Help Desk, de su campus para recibir asistencia. Este ha sido un anuncio de alerta de estafa de CUNY.
5: Yo, what's good? This is Mark Taylor at Official Mark Taylor on IG. You are now listening to YCRadio.org, the voice of today's generation.
6: What up, it's the Kid Out of War from BYB and YC. You listen to YCRadio.org, the voice of today's generation.